0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410.
1: With the biggest soothers, it's your Leica Radio.

ना भी जानी है, नाल चले सब कोए, चंगा ना और खाए के जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुजई, जे तिस गुण कोई करे।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावे।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होश

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर ना जीवन मरण नहि जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगति छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान।

0: Breaker Radio. London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
1: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
0: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
0: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
4: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
3: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
5: Be part of a historic grand opening.
6: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
5: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
6: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
5: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
8: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116 332 5100। एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
9: Punjab, the biggest tunes.

0: और बहनों भाइयों, एक और मनोरंजन, एक और कार्यक्रम, एक और मुलाकात, संगीत की सौगात रवि शर्मा के साथ जुड़े रहिएगा। शुरुआत करेंगे शायरी से और फिर आगे बढ़ेंगे समाचारों के साथ चिंतन की सौगात। फिलहाल तो ये कहना चाहेंगे कि अंधेरे दे के मुझको झिल मिलाती कहकशां ले ले, तुझे क्या चाहिए दोनों जहां दे दे। जगह दिल में जरा सी दे के मुझको मुझसे बदले में, नदी दरिया समंदर ले, जमी ले आसमां ले ले। तलब कम है तेरी जालिम, ये मेरा जर्फ ज्यादा है, जो मांगा भी तो दिल मांगा, अरे तू मेरी जान ले ले। हर एक खुश रंग है दुनिया की तेरे नाम कर दूंगा, सितारे चांद कलियां फूल ले ले, गुल सिता ले ले, तू मेरी जान ले।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Leica Radio network.

0: ऐसी धमाकेदार शुरुआत होती है मनोरंजन प्रोग्राम की। वही हर रोज शायरी के लिए खुलती है डायरी और फिर बजता है संगीत जिस पर आप थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर गाड़ी चलाते हुए भैरव भाई ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो भाई ऐसा मत कीजिएगा, सावधानी से गाड़ी चलाइए और सड़क पर अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित बनाइए। दफ्तर में है, डोंट वरी, दफ्तर में भाई कुर्सी पे बैठे बैठे या उठकर खड़े होकर के आप डांस करना शुरू कर दें। बॉस कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना, कह देना रवि शर्मा ने बोला है, आगे मैं देख लूंगा। एक ने पूछा था क्या देख लेंगे, बॉस को देख लेंगे, दूर से देख लेंगे क्या है। तो साहब दो गीत हमने परोसे, मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को पसंद आए होंगे। पहला गीत था उतरा ना दिल में कोई, कोई नहीं उतरा, बस कैसे उतरते साहब, पहले ही भीड़ थी बहुत सा। और दूसरा गीत ताकि हो ताकि, ये हिम्मत वाला फिल्म से लिया गया था। तो साहब गीत सुनने के बाद अब हम पहला काम ये करते हैं कि आपको पाउंड का रेट बताते हैं भारतीय करेंसी में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके इस समय क्या रेट दे रहे हैं भाई, एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं 127 रुपए और 5 पैसे, यस 127.05 रुपीज, एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollots Hill, Leicester, LE5 4UN.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: लंदन, आर यू रेडी? रागा presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
5: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Start

0: रफी साहब की आवाज में सुना आपने ये मेलोडियस ट्यून पर आधारित गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: और लीजिए साहब, अब मुड़ते हैं, समय हुआ जा रहा है खबरों की ओर जाने का। वैसे नए प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार अच्छी तरह संभाल लिया है यहाँ नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, और भाई कुछ नई घोषणाएं भी सामने आ रही हैं, जिनमें एक तो जेलों में भीड़ को कम करने के लिए अपराधियों को अर्ली रिलीज किया जा रहा है, जल्दी छोड़ा जा रहा है। एक जमाना था, हम सुना करते थे कि भाई अच्छे कैरेक्टर की वजह से, अच्छे चाल चलन की वजह से किसी अपराधी को जल्दी रिहा किया जाना है या जा रहा है। अब जेलों में बढ़ती भीड़ के कारण अपराधियों को रिलीज किया जा रहा है, भाई अब ये भी सामने आने लगा है। और भी कुछ नीतियां प्रधानमंत्री की जो है वो सामने आ रही हैं, जैसे पीएम अनाउंसिस स्कूल्स शेकअप टू कीप यंग पीपल ऑफ बेनिफिट्स, भाई विचार है। और हिंदुस्तान से आने वाली खबरों में क्या है, वहां पार्लियामेंट के भाई इस सेशन में कुछ गंभीर बिल पेश किए जा रहे हैं जो उन समस्याओं को टारगेट करते हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव इन द न्यूज। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खास खास समाचार सुनिए। भारत की लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में आज दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बिल में 2024 में बने कानून में थोड़ा बदलाव लाने का प्रस्ताव है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हैं, राजी हैं कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर 8 घंटे से भी ज्यादा समय की जरूरत पड़ी तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पास किया जाना जरूरी है। भारत के असम राज्य में बाढ़ में कई गांव डूबे हुए हैं। ऊपरी असम में हालात काफी गंभीर हैं। असम राज्य की आपदा प्रबंधन विभाग ने कल देर शाम बाढ़ की स्थिति को लेकर के जो रिपोर्ट जारी की है उसमें मामूली सुधार के दावे किए गए हैं, लेकिन ऊपरी असम के 3 जिलों में जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल होने में कई महीने लग जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, भाई जो जंतर मंतर पर तो समाप्त हो गया है लेकिन उसकी चर्चा और उसके जो असरात हैं वो अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले, जो नॉन क्रिमिनल ऐसे हैं जिनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट में थे शीघ्र रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। कानूनी खबरों के विश्लेषण की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। मशहूर फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, ये सुनी होगी कभी भाई, इस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे पैकेजेस पर इसका देख करके भाई दवाइयों की दुकानों में इसकी काफी प्रोडक्ट्स होती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने उन हजारों मुकदमों को निपटाने के लिए $5.5 अरब तक देने की पेशकश की है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी का बेबी पाउडर और टेलकम वाले प्रोडक्ट ओवेरी कैंसर की वजह बन रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के हिस्से में आया एक और गोल्ड मेडल, शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए ये पहला गोल्ड मेडल जीता है। वहीं लॉन्ग जंप में खिलाड़ी सर्वेश कुशारे, बल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने भी एक एक सिल्वर मेडल जीतकर भारत के मेडल्स की संख्या में तादाद में इजाफा किया है। फ्रांस के जंगलों में आग अभी भी लगी हुई है। देश के दक्षिण पश्चिमी शहर बोर्डो से ये सिर्फ अब 15 किलोमीटर दूर रह गई है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। विमान से पानी की बौछार डाली जा रही है, पर आग पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने में अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। भारत से आने वाली खबरों में बिहार के सिवान में स्टूडेंट्स के ग्रुप की ओर से बिहार पुलिस के जवान का AK-47 राइफल तानने का एक वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी पर बिहार में पुलिस स्टेट चलाने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के सवाल पर न्यूयॉर्क के मेयर का बयान आया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने के सवाल पर रिएक्ट किया है। ममदानी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप में पड़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। नेतन्याहू के बारे में जुड़े सवालों को टालते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रायोरिटी न्यूयॉर्क के सभी निवासियों की सिक्योरिटी निश्चित करना है। आपको बता दें कि जोहरान ममदानी ने उन्हें न्यूयॉर्क आने पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने की बात कही थी। ट्रंप का दावा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी तनाव को लेकर काफी दोस्ताना बातचीत चल रही है। लगातार तीसरे दिन भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कल सोमवार को कहा कि मुझे लगता है कि इस जंग को खत्म करने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। उधर ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बातचीत हो रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो?

0: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। ब्रिटिश घड़ियों में सुबह के 11:04 हुए हैं और बहन भाइयों, मनोरंजन में ये समय है चिंतन के लिए, निश्चित थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं आलेख दिनेश शर्मा का, दिनेश शर्मा टीटू। कह रहे हैं कि मैं चिंतन भेज रहा हूं लेकिन जानना चाहता हूं, हमने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया है, क्या श्रावण मास में आप भगवान शिव से जुड़े और कांवड़ से जुड़े भजन सुनवाएंगे? भाई हमारे यहाँ रंग जो है वो यूँ कहिए कि अलग अलग प्लांट से, पौधों से, फूलों से खुशबू ली होती है, सब मिला जुला कार्यक्रम होता है। आप सुनते रहिए, वो भी सुनवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं, जानकर अच्छा लगा, और भी लोगों को जोड़िए। आइए अब सुनते हैं आज का विचार, एक प्रेरक प्रसंग जिसे हम कहते हैं चिंतन।
1: चिंतन, चिंतन।
0: जिंदगी में अगर कभी ठोकर लगे तो क्या आप वहीं बैठ जाते हैं, आगे चलने से इनकार कर देते हैं, या पीछे मुड़ जाते हैं? क्या रिएक्शन होता है आपका? एक बच्चा समंदर किनारे बैठे रो रहा था।

समंदर की लहरें तट से टकराने से रुक गई थी क्या? खत्म हो गई थी क्या? नहीं, लहरें तो अब भी आ रही हैं, बच्चे ने कहा। तो फिर तुम क्यों रुक गए? जहां जिस पॉइंट पर तुम भूल गए थे, अब ये ऐसा तो है नहीं कि लहरों का आना रुक गया हो। लहरें आ रही हैं, तट से टकरा रही हैं, फिर से गिनना शुरू कर दो। बच्चा सोच में पड़ गया, अरे भाई किसी पॉइंट से सुबह गिनना शुरू किया था, अब फिर से गिनना शुरू कर दो। जो काम बीच में छूट गया, तार टूट गया, फिर से जोड़ दो, फिर शुरू हो जाओ, कामयाबी मिलेगी। बच्चा खुश हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था। उसने फिर से लहरों को गिनना शुरू कर दिया। अब जितनी देर गिननी थी उसने गिनी। पर्पस चाहे उसका मनोरंजन रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन बहनों भाइयों संदेश एक मिल गया। अगर आप चलते चलते किसी पॉइंट पर ठोकर खा के रुक जाएंगे तो रुकने से आप मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उठकर कपड़े झाड़कर फिर चलना शुरू कर दो, लहरों को फिर से गिनना शुरू कर दो, फिर से शुरू हो जाओ। अगर आप बैठ गए तो समझो चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। ऐ जिंदगी के राही किस बात की है देरी, फिर शुरू हो जाओ।

0: तुझको चलना होगा। चलना ही तो जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी।
1: चिंतन चिंतन
0: चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। चलते रहिए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख भारत से दिनेश शर्मा टीटू ने भिजवाया, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। जो गीत हमने सुनवाया मन्ना डे व साथियों की आवाजों में था, सफर फिल्म से लिया गया था, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया था। और बहन भाइयों, याद दिला दें आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रसारित किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, याद दिला रहे हैं भाई, पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो हमारी सेवाओं का फायदा उठाइए, रेट अच्छा चल रहा है। टुडेज रेट इज फॉर 1 pound दे आर गिविंग 127.05 rupees, 127.05 rupees. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK मोबाइल ऐप, बट रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
4: Laika Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.

0: बस शहर को रोने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या सगाई हो गई। हाँ, वो कहती है, कहावत है कि भाई नोट तोड़ाया और गया, यानी अगर एक बार आप नोट को खुला करा लेना और चेंज तो रुकती नहीं है जेब में, फिर नोट तोड़ाया गया और छोरा ब्याया और गया, काम से गया, परिवार से गया, यूं कहो अपने आप से भी गया। मेरी भी सगाई हुई, रोए शहर सारा, तो रोएगी तो वो जो दुल्हन बन के आएगी। बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने सुनवा दिए आपको, और बहनों भाइयों अब याद दिला दूं आपको कि एक बजे तक हमारा आपका ये साथ बना रहेगा। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:28 हुए।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: मेरी भी सगाई हुई, रोए शहर सारा, अब क्यों? क्योंकि कहते हैं हर किसी की नजर थी इस नौजवान पर।

दिलों का लेन देन भाई उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के बीच हो रहा था आवाज के माध्यम से, लेकिन जिस अभिनेत्री पर ये गीत पिक्चराइज हुआ, मेरा ख्याल हीरो थे सलमान खान और हीरोइन थी आयशा जुल्का। भूले तो नहीं आप इस कश्मीरी ब्यूटी को, आयशा जुल्का। आज के दिन भाई उनका जन्म हुआ था श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, और अब तो 54 बरस की हो गई हैं आज। मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू आयशा जुल्का। आजकल भाई फिल्मों में तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत फिल्मों में काम किया उन्होंने और अच्छा मुकाम हासिल किया। आयशा जुल्का को जन्मदिन की बधाई देते हुए बता दें कि उन्होंने तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उन्हीं की फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। और भाई साथ में हम ये भी बता दें कि अगर आपके घर परिवार में आज किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स।

0: दुनिया में हमारा दिल ही तो है भाई। इस दिल के बड़े किस्से, बड़ी कहानियां हैं। दिल के सहारे कितनी शायरी हुई है, कितने गीत लिखे गए हैं, कितनी सिचुएशंस बनी है। ये गीत पसंद किया मानसी ने। मानसी कहती है लवली सॉन्ग, चलिए आपके नाम किया। टोरंटो में उल्लास हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं। और रंजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा वोरा रमीला पटेल हैरो में हमारे साथ जुड़ी हैं।
1: हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा,
0: दिल ही तो साथ देता है। आखिरी सांस तक अगर कोई साथ निभाता है तो वो दिल ही तो है। 2400 घंटे सातों दिन सीने में जो धड़कता है, जो भाई हमारा क्या कहें आपको, बिना कोई मजदूरी लिए हमें जिंदा रखता, दिल ही तो है। दिनेश दीनू दत्ता, आपका संदेश मिल गया। सो नाइस ऑफ यू। अर्जन पम्मी स्लो में सुन रहे हैं। प्रतिभा जी थैंक यू वेरी मच। निर्मला गिरीश ईलिंग में, मीना लखारी जी और बुशी में जगदीश जी, सुनीता शर्मा जी, महेंद्र पटेल, नीला चौधरी, हरविंदर रानी, भरत गंगाराम, राजेंद्र राज, राजीव पटेल, एवरीबॉडी डिजर्व्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudhi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A, Rollots Hill, Leicester, LE5 4UN.
2: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwala,
8: nazar se nazar,
7: performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-180 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
5: और बहनों भाइयों, ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। किशोर अवस्था में एक उम्र ऐसी भी होती है भाई, जब लोग, मेरा मतलब नौजवान, अपना प्यार छुपाते हैं। किससे? घर वालों से, माता पिता से। और उसी उम्र में कुछ लोग अपना प्यार जताते हैं दोस्तों में, ये दिखाने के लिए कि वो कितने हैंडसम है, उन पर कितनी लड़कियां मरती हैं। हमारे एक दोस्त थे भाई, वो तो खुद ही अपने नाम लव लेटर लिख करके और नोटिस बोर्ड पर, जहां वो लेटर बॉक्स जहां पर मतलब लोग लड़कों की चिट्ठियां स्कूल में कॉलेज में वो चिपकाई जाती है कि अपनी चिट्ठी ले लें, तो वहां वो अपने नाम लेटर लिख के, लव लेटर लिख के खुद ही चिपकाता था भाई, ताकि साबित कर सके कि भाई मैं भी हैंडसम हूं, मुझ में भी लड़कियां मरती हैं। लेकिन जब जब मैं ये गीत बजाता हूँ बहनों भाइयों, यकीन मानिए मुझे याद आता है वो समय जब एक बार मैं स्टूडियो में जूही चावला और दिव्या भारती दोनों को इंटरव्यू कर रहा था, साथ साथ उनकी फिल्मों के बारे में बातें की, उनके अभिनय के बारे में। लेकिन साहब फिर उनकी जब जाती जिंदगी के बारे में सवाल पूछना शुरू किए तो एक दूसरे का मुंह देख रही थी दोनों, जूही और दिव्या भारती। वो दिव्या भारती जो बहुत छोटी उम्र में दुनिया और फिल्मी दुनिया से चल बसी। मैंने पूछा था कि भाई किसी से प्रेम हुआ, कहीं कुछ क्लिक हुआ? तो एक दूसरे का मुंह देख के कह रही, तू बोल जूही तू बोल दिव्या

कोई निशानी? किस रंग का कुर्ता पहना उसने? पगड़ी कैसी है उसकी? जो बस गया है तुम्हारे दिल में। मेले में पहचान बताई जा रही है।

0: बच के रहना रे बाबा, आज अपने प्यार पे मुझको फक्र है लेकिन मुझको फिक्र है। प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है श्रोताओं का। भाई बच के रहना रे बाबा, भाई एक क्या कहते हैं, दिल में रखती है और फिर बाबा कहती है, निकाल के बाहर फेंक दिल से, हमें अगर बाबा ही कहना है तो बाबा क्यों। कार्यक्रम का ये तीसरा और अंतिम दौर। माय नेम इज रवि शर्मा, नाम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और बहनों भाइयों, अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो भाई 2.25 घंटे का कार्यक्रम आप मिस कर चुके हैं। अब जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पहले आपको बताते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट, एक पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए मिल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके गिविंग 127.05 इंडियन रुपीज फॉर 1 pound। एक पाउंड के बदले 127.05 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: लिस्ट अप, स्टॉक अप एंड सेव एट फाल्कन कैश एंड कैरी। फाल्कन चक्की आटा 10 kg 749, लेला मीडियम आटा 10 kg जस्ट 399, दिशा एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस 20 kg 24.99, हीरा बटर घी 2 kg 10.99 एंड फाल्कन पनीर बॉक्स 8.99। गेट फाल्कन केसर मैंगो पल्प फॉर 149, टाटा सॉल्ट फॉर 69p, किसान हॉट एंड स्पाइसी सॉस फॉर 99p एंड 2 फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg फॉर 399, मिडो योगर्ट 10 kg 899, करेला और लॉन्ग दूधी 299 पर किलो। ऑफर्स वैलिड फ्रॉम 6th जुलाई टू 2nd अगस्त एट फाल्कन कैश एंड कैरी, 82A Syston Street West, Leicester LE12JU and 2A Rollout Hill, Leicester LE54UN.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Leicester Miller is back.
8: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
7: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
8: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी
2: गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ करेज खिलाड़ी सीजन 15 होस्टेड बाय एक्शन माइस्ट्रो रोहित शेट्टी।
3: वेलकम टू दरगा कैपिटल केप टाउन।
2: Bigger stunts, tougher challenges, and fearless contestants battling it out like never before. Don't miss the adrenaline rush. Starting this July on Colors TV. Are you ready to face your fears?
4: Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
5: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
6: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
7: और बहनों भाइयों, याद दिला दूं आपको कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है कैटा श्री जोसेफ येसुदास। ऐसी सुरीली आवाज और इस उम्र में भी भाई। वैसे बता दूं आपको कि हजारों गीत गाए हैं उन्होंने। यस, हजारों मतलब रिकॉर्ड कराए हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। वैसे तो वो साउथ इंडियन है लेकिन बंगाली, मराठी, अरेबिक, तेलुगु, ओडिया, मलयालम, तमिल, सभी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। और वही वो सारे के सारे ऐसे सुरीले हैं कि भाषा आपके भले ही समझ में नहीं आती हो लेकिन गीत आप फिर भी एंजॉय करेंगे। यसुदास।

0: सुरीले गायक कलाकार पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भाई भारत सरकार ने कितने सम्मान दिए और वैसे भी फिल्मी दुनिया में संगीत क्षेत्र में कई अवार्ड्स अपने नाम करने वाले यशुदास इशप्टा के कलाकार हैं। यशुदास 86 बरस के हो गए, यस इज 86, ही वॉज बॉर्न ऑन 10th of January in 1940 और इनका जन्म स्थान कोची केरला में। लेकिन भाई भारत की कितनी ही भाषाओं में, बाहर की भाषाओं में भी इन्होंने गीत गाए हैं और हम उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए दुआ करते हैं कि कुछ और गीत जुड़ जाएं इनकी भाई रचनाओं में, इनके गीतों में। तो साहब और भी बहुत सारे गीत आप सुनेंगे क्योंकि वो इस सप्ताह खूब गूंजेंगे लाइका गोल्ड रेडियो पर।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: दिल में है तू, जिगर में तू, फेफड़ों में तू, किडनी में भी तू।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहन भाइयों, गीत संगीत सुनवाते हुए कुछ एक संदेश भी हमारे सामने आ जाते हैं जो आपके साथ हमने साझा करने हैं। एक तो ये कि भाई हम लोग कई बड़े बड़े कार्यक्रमों के मीडिया पार्टनर्स हैं। आपको बता दें कि जो दिवाली स्टोरी कार्यक्रम हो रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ दैट स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी। भूलिएगा नहीं, 27 सितंबर को वेम्बली अरीना में, ओवो वेम्बली अरीना में इसका प्रदर्शन है। और भाई हम लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट एट एबे पार्क, ऑल्सो द ब्रेडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st and 2nd ऑफ ऑगस्ट एट सिटी पार्क। तो भाई जहां जहां भी पहुंच सके पहुंचिए और हमारे साथियों से मुलाकात कीजिए। हमारे कार्यक्रम जो है आउट एंड अबाउट चलते रहते हैं और बाहर मिलकर के आपसे बहुत अच्छा लगे।
2: ये है
1: Like a Radio.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: खिलता है, सबका खिलता है, सबको मिलता है, सबके साथ होता है। अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर, दो सुरीली आवाजें। संगीत था फिल्म का नाम, 1992 की फिल्म थी। बड़े सुरीले गीत है इस फिल्म में भाई, दूसरे गीत भी कभी आएगी बारी, उनकी सुनवाए जाएंगे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और रेट्स मैं बता देता हूँ भाई, LemFi वाले जो इस समय एक पाउंड के बदले दे रहे हैं इंडियन करेंसी में, भारतीय मुद्रा में 127.27 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 368.91, श्रीलंकन रुपए 446.27, बांग्लादेशी टके 163.95 और अफगान अफगानी 88.25।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: And the gold is trading at the rate of 97.6 pounds.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 2.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 0208574-8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-393-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with Pepalicious flavour. Birmingham, come and get it.
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62 to 64 Belgrave Road, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116 332 5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
3: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
5: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Next, Gold Afternoons with Bali Brambat on Leica Radio Midlands.
6: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: और डीजे साहब, अब धीरे धीरे हम अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और खबरें आप पहले सुनेंगे, उसके बाद बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे। अब ताजा खबरों में आपको बता दें कि भारत में पार्लियामेंट में आज जो बिल पेश किया गया उसमें 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, पेपर लीक रोकने वाले नए प्रस्तावित कानून में ये बातें शामिल की गई हैं। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, वहां पीओके में जो इलेक्शन चल रहे उसके दौरान भाई सिक्योरिटी फोर्सेज और लोगों के बीच टकराव में कई लोग मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। खबरों का इंतजार कीजिए और रवि शर्मा को अब इजाजत दीजिए। हमारी आपकी मुलाकात कल होगी एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर। मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अब जाऊंगा। ये ऐसा तो नहीं है भाई, घर भी है, ठिकाना भी है, लेकिन कल आने के लिए हमें आज जाना भी है। Have a superb day. Bye-bye.

0: गोल्ड आफ्टरनून टू यू. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट आपकी खिदमत में ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव डीएबी एलेक्सा गूगल होम एंड लाइका गोल्ड डॉट कॉम ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप. And a big, big gold afternoon to everyone on Radio Midlands. 385th day of Leica Radio Midlands. Aaj hum yaad kar rahe hain one of my favorites. Yes, unka naam Zebunisa Khan. Zebunisa Khan, jisko hum pyaar se Kum Kum ke naam se jante hain. Bachpan se hi, jab main सिनेमा में जाता था मेरे पेरेंट्स के साथ, तब से आई यूज टू एडमायर दिस वंडरफुल फेस विद ह्यूज बिग आईज एंड अ ब्यूटिफुल स्माइल एंड वेरी वर्सटाइल इन हर एक्टिंग एंड डांसिंग. अमेजिंग हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस. यू नो इनका नाम कुमकुम और इनका जन्म हुआ 8th of June 1938 एंड शी पास्ड अवे at a beautiful age of 82, 28th July 2020, that is 6 years ago. So we are remembering her on her 6th death anniversary. जैसे मैंने कहा, Zebunisa इनका नाम, and she was the daughter of a Nawab, जहाँ पे ये जन्मी थी, Hussainabad of Shekhupura in Bihar. वहां के वो नवाब उनके पिताजी थे. अब हुआ क्या कि कुमकुम को वैसे तो फिल्मों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, लेकिन ऐसा सोचा तो नहीं था कि मैं जाके एक्ट्रेस बनूंगी. लेकिन इनको डिस्कवर किया किसने? गुरुदत्त जी ने. गुरुदत्त जी को एक गाना शूट करना था. ये गाना शूट करना था इनको, यू नो जगदीप, हमारे जगदीप जी, हाँ द कॉमेडियन, उनके ऊपर ये एक गाना पिक्चराइज करना था, कभी आर कभी पार. लेकिन उन्होंने माइंड चेंज कर लिया और सोचा कि ये गाना एक फीमेल के ऊपर होना चाहिए. विच वॉज राइटली सो. आई थिंक व्हेन यू हियर द सॉन्ग यू डू रियलाइज दैट इट वॉज द राइट डिसीजन. तो इन्होंने जब डिसाइड किया कि ये गाना मैं एक फीमेल पे पिक्चराइज करूंगा, तो उन्होंने खोजना शुरू कर दिया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग ऑल द फेमस एक्ट्रेसेस ऑफ दोज टाइम्स एंड नन ऑफ देम वांटेड टू डू अ स्मॉल रोल. ये छोटा सा रोल था फिल्म में, तो नेचुरली दे डिड नॉट वांट अ स्मॉल रोल. जहाँ पे कुमकुम ने हाँ कह दी, और जब कुमकुम ने हाँ कही तो कभी आर कभी पार गाने का शूटिंग उन पे हुआ. एंड उसके बाद गुरुदत्त के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई. तो CID फिल्म, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, उन सब में इनको गाने भी मिले, जो गाने उन पे पिक्चराइज होते थे, और एक्टिंग का रोल भी मिलने लगा. एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग हीरोइन रोल्स एज वेल. अब देखा जाए तो 1956 में इन्होंने एक साइड रोल किया था. हीरो कौन थे? शम्मी कपूर. अब शम्मी कपूर के सामने अगर एक्टिंग करनी हो तो लीड रोल ऐसे ही नहीं मिल जाता. 1956 का साल था, और 1956 में आई थिंक शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड शी गॉट अ साइड रोल विद शम्मी कपूर. और 3 साल के बाद कुमकुम ने ऐसा बड़ा नाम कमा लिया था उन 3 सालों में कि 1956 में साइड रोल और 1959 में मेन रोल विद द फिल्म चार दिल चार राहें. दैट वाज द मेन रोल. और साइड रोल जो था वो फिल्म मेम साहब का था. अभी सोचो क्या लक कि धर्मेंद्र, व्हेन ही डिड हिज डेब्यू फिल्म, धर्मेंद्रस फर्स्ट हीरोइन वॉज कुमकुम. तेरे हम भी, दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960 की फिल्म जो थी, दैट वाज द डेब्यू फिल्म ऑफ धर्मेंद्र. एंड उनको लीड रोल, फर्स्ट हीरोइन ऑफ धर्मेंद्र वाज कुमकुम. एंड देन शी वाज सो हार्ड वर्किंग. शी थॉट मैं डांसिंग करना जानती तो मुझे और भी अच्छे रोल्स मिलेंगे, क्योंकि वैसे तो डांसिंग वो करती ही थी विदाउट ट्रेनिंग, लेकिन पंडित शंभू महाराज इन्होंने उनको ट्रेन किया कथक डांसिंग में। और कोहिनूर फिल्म में जो दो गाने हुए थे, मधुबन में राधिका नाचेरे एंड हाय जादूगर का तिल, ओ माय गॉड, आज भी लोग वो डांसिंग देखते हैं और खुश हो जाते हैं। किशोर कुमार जी के साथ इन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, गंगा की लहरें वॉज वन ऑफ द फिल्म्स, एंड इनके गाने हम सुनते जाएंगे और बातें भी करते जाएंगे। अभी आपने एक गाना देखा, कौन सा था, खूबसूरत हसीना, खूबसूरत हसीना, उस पे कुमार सानू का एक गाना है, ए मेरे हम सफर, है ना वही गाना। हाँ, वो वन ऑफ द लेटेस्ट गाने ऑफ कुमार सानू, एंड उसके अंदर जो गिटार का पीस है उस गाने का, ए मेरे हम सफर, टनंग टिंग टें टें टें, वो पीस कौन सा है, आजा रे आ जरा, टनंग टिंग टें टें टें, वही गिटार का पीस इसी गाने में डाला है, क्या मिश्रण हुआ नहीं। एनीवे, लेट्स कम बैक टू कुमकुम एंड एंजॉय टॉकिंग अबाउट हर, एंजॉय हर लाइफ, एंड नॉट ओनली दैट, शी वाज एक्टिंग फॉर 19 ईयर्स, और 19 ईयर्स में 101 फिल्म, और इन्होंने भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म जो थी वो इन्होंने की थी, गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई बो, हाँ, तो वो पहली फिल्म थी। उसके बाद काफ़ी की थी, नाज एक्ट्रेस और कुमकुम, इन दोनों ने पकड़ के रखा था भोजपुरी इंडस्ट्री। एंड आगे जाते हुए हम और भी गाने सुनेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। Kumkum for 2 hours, you're gonna enjoy all the wonderful songs of Kumkum.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127.05. 127.05 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, Payback singer Amantrika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar, and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
9: इन रियल
8: real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
12: Nazar se nazar.
11: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
14: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
13: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
15: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
16: Punjab, the biggest tunes.

0: शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र की लिरिक्स एंड व्हाट अ सॉन्ग। ये किशोर कुमार के साथ इनका पिक्चराइजेशन था। किशोर कुमार ने तो गाया ही नहीं है क्योंकि लता जी ने ही गाया है इसमें, लेकिन इतना एंटरटेन किया किशोर दा ने। स्टार्टिंग में बो एंड एरो लेकर आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक खटियन के ऊपर समरसॉल्ट भी करते हैं, एंड द सॉन्ग इज सो ब्यूटिफुली पिक्चराइज इन ब्लैक एंड वाइट एंड व्हाट अ सॉन्ग। कुमकुम को याद कर रहा है।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Leica Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.

0: वाह क्या गाना आज की तारीख में जहां भी जाओ ये गाना हमेशा सुनाई देता है. दिस इज सुल्ताना एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी की लिरिक्स. अब इसके इस गाने के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पर्दा खुलता है. ऑडियंस पूरी थिएटर के अंदर बैठी है और पर्दा खुलता है और एक सिलुएट फिगर आती है. And she starts swaying her hips and everything. और उसके बाद lights on होती है. And that's Kumkum. And she's dancing. And suddenly entry like हवा का झोंका comes in किशोर कुमार. And how is he dressed? He's dressed in a Pathani uniform, a Pathani clothing. And he's got one of those, you know, Morocco जाओगे तो आप लाल रंग की वो टोपी नजर आती है. It's a red hat. With a black tassel on it, है ना? उसको बोलते हैं फैज. वो actually it's known as फैज. Why? Because it originated from a place, a Moroccan city called फैज, F-E-Z. लेकिन Arabic में it was काफी spread हो गया था पूरा Turkoman Empire में, and it was called तरबूश. उसका दूसरा नाम है. लेकिन फैज नाम लोकल जो जहाँ पे मोरक्को की सिटी जो थी वहाँ से ओरिजिनेट हुई तो उनको उसको फैज बोलते हैं. और वहाँ पे लोकल बेरीज लाल रंग की बेरीज जो थी वर ओरिजिनली यूज्ड टू मेक द डिस्टिंक्टिव रेड डाई. लाल रंग की वो जो डाई उसी से उसका कलर है लाल रंग का. एंड जैसे मैंने कहा कि अरेबिक रीजियन में तो इट्स नोन एज तरबूश. और जब भी कोई फॉर्मल ओकेजन होता है एंड नेशनल हॉलीडेज होती है तब ये ट्रेडिशनल रॉयल अटायर इन मोरक्को यूज किया जाता है. तो किशोर कुमार एंटर्स विद दैट लाल टोपी एंड द वे ही सिंग्स एंड बोथ ऑफ देम डू सुल्ताना सुल्ताना तू ना घबराना. ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड वर्थ वॉचिंग ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल. किशोर कुमार के साथ, किशोर कुमार जी के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा कुमकुम जी का. एंड दे रियली डिड, दे वर अ मैजिकल पेयर एंड दे डिड मैनी फिल्म्स टुगेदर. लाइक आई सेड, गंगा की लहरें, श्रीमान फंतूश, ऐसी ऐसी फिल्में. अब कुमकुम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 110 फिल्में की, 110 फिल्म्स प्लस अबाउट ए डजन भोजपुरी फिल्म्स जो इन्होंने की थी. इन 1972, now when she was born in 1938, so 48, 58, 68, that's 34 years of age. 34 साल की उम्र में she married Sayyed Sajjad Akbar Khan. Sayyed Sajjad was actually from Lucknow, but he was working in Saudi Arabia. अब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और छोड़कर वो चली गई सऊदी अरेबिया टू सेटल. एंड देन आफ्टर 23 ईयर्स, आई थिंक 1995 में शी केम बैक आफ्टर 23 ईयर्स बैक टू मुंबई. एंड दे हैड अ डॉटर सईदा अंदलीब सज्जाद खान. एंड आई थॉट आई शुड शेयर हर वंडरफुल लाइफ हिस्ट्री ऑफ कुमकुम जी बिकॉज वी आर रिमेम्बरिंग हर real name Zaibunisa Khan, and she, it's her 6th death anniversary, and very fondly do I always remember her, chahe unki birth anniversary ho ya death anniversary ho, because she had some wonderful talent acting wise and dancing wise, and all the songs that you are listening to are super duper hit songs, so why not, hey? I hope you're enjoying the tribute of Zaibunisa Khan, that is Kumkum.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And looking at all the currencies, each currency equivalent to one sterling pound. US dollars, 1.3292. Indian rupees, 127.31. Pakistani rupees, 369.17. Afghan afghanis, 88.27. Kenyan shillings 172.1, and for one sterling pound, Mauritian rupees 63.11.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £97.66 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
4: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
5: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99. Per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE54UN.
6: Leicester Mela is back
7: and the stage is about to explode. Confirmed artist
6: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
7: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
9: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
8: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
10: Kya aap nurse, physiotherapist, occupational therapist ya paramedic hai? Kya aap office hours mein kaam karna chahte hai? Jahan har weekend chutti ho aur night shift bilkul na karni pade. Capita mein hum Midlands ki vipin locations ke liye hybrid clinical assessors ki bharti kar rahe hai. Area se bahar rehne walo ke liye remote working ki suvidha bhi uplabdh hai. Shuruati salary hai £39,500. Saath mein puri training, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: से निराला। मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
1: All मैमस्टर products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
4: ये है लाइका गोल्ड

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू गोल टू गोल टू। दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।

0: Wow. I mean, when you listen to these kind of classical songs, Ja Ja Re Ja Bala Mua, yahan pe you see the actual talent of Kumkum Ji, the way she showed her classical dancing talent, and she was trained in Kathak by Pandit Shambhu Maharaj. Aur inhone jitne bhi gaane क्लासिकल में डांस किए हैं आज तक भी इतने मशहूर है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शंकर जयकिशन ने राग पीलू, मियाँ की मल्हार, तोड़ी, झिनझिनो, कौन सी थी एक बसंत बहार, जी हाँ, और भैरवी, और ये सब राग को इस्तेमाल करके इन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया. एंड द फिल्म वॉज बसंत बहार विद भारत भूषण एंड निम्मी. And it was a beautiful story, 1959 ki, and Kumkum was only 21 years old. Suniyega aage.
1: This is Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands and Greater Manchester.
0: Mera naam hai Chameli. Film hai Raja aur Rank.

वाओ, और एंड में जो बिजली का चमकारा होता है. वी आर एक्चुअली लिसनिंग टू द सॉन्ग्स दैट वर पिक्चराइज्ड ऑन कुमकुम. कुमकुम ज़ेबुनी सा खान एंड इट्स हर सिक्स्थ डेथ एनिवर्सरी. लाइक फर्स्ट आवर में मैंने उनके बारे में सब कुछ बताया आपको, और अब हम उनके गाने सुन रहे हैं जो पिक्चराइज हुए उन पर. पहला गाना था फिल्म बसंत पहाड़ का, 1956 की जो फिल्म थी. लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनों ने गाया था उसके अंदर. एंड इट वाज कर गया रे मुझ पे, एंड दैट वाज भारत भूषण एक मुजरा में बैठे हैं और कुमकुम डांस कर रही है, और सैडली साथ में निम्मी कहीं पे बैठ के सितार बजा रही है और वो भी गा रही है. सो इट्स लाइक हैप्पी सैड मोमेंट्स दे शो. And Kumkum really shows her prowess as a dancer, the classical knowledge she had in Kathak. And she was trained by Pandit Shambhu Maharaj. And Shambhu Maharaj ji ne jo training unko di, wo nazar aati hai. And dusre gaane ke andar bhi, itna grandeur se ek itna beautiful film ka set banaya hai. Uske andar sab jagah murtiyan hain. और एक बड़ा स्टेज है जहाँ से एक स्लोप है, और स्लोप के ऊपर से सब लड़कियाँ आती है, वेरी कलरफुल, दे आर ड्रेस्ड इन पिंक एंड ब्लू, एंड कुमकुम कम्स राइट इन द मिडल एंड स्टार्ट्स डांसिंग. फिल्म है सन ऑफ इंडिया 1962 की. वो पहला गाना था वो शंकर जयकिशन का संगीत था, और ये दिया ना भुजेरी, बहुत अच्छा संगीत दिया नौशाद जी ने, और उसके अंदर लिरिक्स जो थी शकील बदायूनी जी की. सन ऑफ इंडिया 1962, एंड वी आर गोना लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम फिल्म कोहिनूर. सबसे

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
3: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
3: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
2: दर्शन पण अने यूरोप पण।
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
2: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स।
3: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
4: द वॉइस दैट डिफाइंड अ कंप्लीट एरा, the songs that touched millions. She's coming to London soon.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Leica Radio Network broadcasting across the UK with Asian stations Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
3: Leica Radio.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में
5: Punjab, the biggest tunes, no.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
1: साफो ट्रैवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 01163251000। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116-471-0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.